0: Lakhanda Radio ITN
1: धन्यवाद समहार हमुवे देवियन मिस निर्माण कर लती अनागते बेनुवे नेवे मतकयन सदा पमनाय